चरक चीने कुछी बा चरक ए ए चरक ए ए चरक ए ए ए चरक दर्शाते अन्य चरक चीने कुछी बा तब चाकत ना